0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने ये गाना। एंड आरटीपी ग्लोबल की रिपोर्ट एक्स टेक एग्जीक्यूटिव के स्टार्टअप्स चमके। जी हाँ, बिजनेस और टेक वर्ल्ड से आज हमारे आरटीपी एरिया से जुड़ी एक बहुत बड़ी और गर्व वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है। यस, आरटीपी द्वारा आज जारी की गई द स्टेट ऑफ ऑपरेटर लेड स्टार्टअप्स रिपोर्ट के मुताबिक अनुभवी टेक एक्सपर्ट्स द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स जो है वो दिल खोलकर फंडिंग दे रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की पिछली फंडिंग दो सालों में बढ़कर सीधे 11% तक पहुंच गई है और ये बहुत ही प्राउड फील करवाने वाली बात है। एंड आरटीपी यार तो टेक का हमारा अभी है एंड यहाँ पे चीज़ें तो होती रहती है, तो प्राउड करने वाली चीज़ जो है आज सामने आई है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक

0: आप सभी का हाल तो काफी अच्छा है एंड सभी लोग मस्त है, खुश है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। खुश रहना है यार, हंसने की तो कोई कीमत नहीं होती है। वेल, अभी मौसम का हाल भी थोड़ा जान लेते हैं। लोकल खबरों के इस आखिरी हिस्से में बात करते हैं मौसम के एक और बड़े अलर्ट की। नेशनल हरिकेन सेंटर ने आज सुबह अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ट्रॉपिकल स्टॉर्म बरथा को लेकर चेतावनी जारी की है, जो 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ गल्फ कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ट्रायंगल एरिया पर इसका सीधा असर नहीं है, लेकिन इसके असर से सेंट्रल एनर्जी में आज शाम में भारी उमस और गरज चमक के साथ अचानक बारिश पड़ने की संभावना जो है वो हुई है। इसलिए सबने अपने आप का एंड अपने अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस मौसम में ख्याल रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना। एंड अब वो रुक करते हैं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ से, जहां से किंग खान शाहरुख खान के फैंस के लिए आज दोपहर एक बड़ी, बहुत बड़ी एंड एक्सक्लूसिव अपडेट आई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही किंग खान की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग अपने आखिरी शूटिंग शेड्यूल के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे अमेरिका या साउथ अमेरिका की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया जाएगा। क्या बात है, ये बात तो बड़ी अच्छी है। इस फिल्म से सुहाना खान अपना धमाकेदार डेब्यू कर रही है और ये फिल्म इसी साल आई गेस ईयर एंड तक सिनेमा घरों में तहलका मचाने वाली है। एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं है कब आने वाली है, लेकिन जैसे ही मुझे अपडेट मिलती है आई विल लेट यू नो। सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड हम फिलहाल बातें कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों के बारे में। मनोरंजन की दुनिया से आज देश को प्राउड फील कराने वाली एक और बड़ी खबर आई है। अमेजोन प्राइम वीडियो ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उनकी ओरिजिनल हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म फुलन को प्रतिष्ठित 51वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दैट इज TIFF 2026 में स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है। मशहूर डायरेक्टर रिची मेहता के निर्देशन में बनी ये फिल्म डाकू रानी फुलन देवी की बायोग्राफी पर आधारित है, जिसका प्रीमियर जो है वो 16 सितंबर को टोरंटो के प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर में होगा। एंड वाकई में ये प्राउड फील करने वाली बात है सभी सिनेमा लवर्स एंड देशवासियों के लिए। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर वाला नाइट्स, एंड अगली खबर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन पर आज बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक बड़ा बयान सामने आया है। कल संसद मार्च के दौरान हुए लाठी चार्ज और हंगामे पर कंगना ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि कल जब उग्र भीड़ ने संसद के दरवाजे बंद कर दिए थे तो अंदर मौसम के सभी जो सांसद हैं वो घबरा गए थे। पुलिस ने सूझबूझ से हमें सुरक्षित निकाला। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी को युवाओं का विरोधी बताते हुए छात्रों के इस आंदोलन को बिल्कुल सही ठहराया है। एंड आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस घटना पर, आप मुझे बता सकते हैं। एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड बातें कर रहे थे हम कुछ जुड़ी हुई बॉलीवुड की खबरों से। तो सोशल मीडिया पर आज बिग बॉस 17 फेम एक्ट्रेस सोनिया बंसल की ग्लैमरस तस्वीरें जो है वो तहलका मचा रही है। सोनिया इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लाइव मजा लेने के लिए स्टेडियम पहुंची हुई है, जहां की उनकी स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक की तस्वीरों ने फैंस का दिल जीत लिया है और इंटरनेट पर आते ही ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। बस यार, वायरल होने का लोगों को बहाना चाहिए, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे कंटेंट है, अच्छे आर्टिस्ट के कंटेंट है, वो क्यों वायरल नहीं होते है? इस बात का मुझे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्यों ऐसा होता नहीं है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, अच्छे सिंगर्स, अच्छे कंटेंट क्रिएटर एंड अच्छी बातें बताने वाले क्रिएटर ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं और यही चीज़ें वायरल होते हुए नज़र आती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, ये मुझे प्लीज़ बताइएगा एंड एन्जॉय करिएगा ये अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SG4, 49 AM, 99.9 FM, SG3 for तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। कहा था ना मैंने आपसे कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 49 AM and 99.9 FM SD3 for Telugu, Naira FM. I'm Kitni Monica और आप सुन रहे हैं Final Rules and Talk. हमारे ट्रायंगल में 26वीं इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF rolls out the purple carpet every other summer, transforming Winston Salem into the mega performing arts center with more than 120 performances in number of the city venues. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं. इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी, पक्का लोकल.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

ஸ்டேட் நம்பர் மீட்டர் கார்டன் கார்டன் ஹோ கியா வெல் 101.9 FM 99.9 FM LG 4 49 AM and 99.9 FM LG 3 4 Telugu Naira same. होने वाला है एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग डील्स. The group plays acoustic jams and country music characterized by the great musical stories, inspired harmonies, instrumental and arrangement. Top of the great set at the stage, Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 फॉर 90 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: वीडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोग.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

WCMC FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना।

best hits. Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

Amitabh Bachchan clears the air on his surgery and ICU admission, says I was referring to Argentina's loss. वैसे भी बिग बी के ट्वीट समझना आसान नहीं है. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो व्हाट, अमिताभ बच्चन हैज क्लेरिफाइड दैट ही इज परफेक्टली फाइन आफ्टर हिज रीसेंट ब्लॉग पोस्ट पार्क्ड हेल्थ कंसर्न. द 83 ईयर ओल्ड एक्टर सेड ही डिड नॉट अंडरगो एनी सर्जरी और हॉस्पिटल और स्टे, एक्सप्लेनिंग दैट हिज पोस्ट वॉज मेटाफोरिकल एंड रेफर्ड टू अर्जेंटीनाज डिफीट एंड मेसीज आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप फिनाले. स्पीकिंग टू वैरायटी इंडिया, बच्चन सेड ही वॉज कंपेयरिंग द इमोशनल आफ्टर of a campaign's loss to the difficult recovery period after surgery, adding that his words were widely misunderstood. यही होता है जब आप मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं, या तो आप समझ जाते हैं या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: And Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira. Your Indian Community Media Network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.
5: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

अब यार सीजीपी का प्रोटेस्ट ऐसा हो चुका है कि अगर आप उसमें कुछ कहते हैं तो आप फंसेंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ नहीं भी कहते तो भी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आप साइलेंट कैसे हैं। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Katrina Kaif has found herself at the center of the social media controversy after one of her prominent fan pages announced its closure over the actress' silence on the ongoing Cockroach Janta Party-led student protest against alleged NEET paper leak and education reforms. The fan page, which had over 70,000 followers, accused the actor of failing to speak up on an issue affecting Indian students, picking a wave of mixed reactions online. I think, man, if the person is not willing to give any opinion, कोई बात नहीं है भाई। आप अगर बोलना हक है तो नहीं भी बोलना एक हक ही बात है। मैं ये बात मानती हूँ कि अगर आप पब्लिक फिगर है देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर आपका उस मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है तो फालतू में कुछ भी कह के लोगों को मिसलीड करना, उससे बेटर है कि आप चुप रहें। आई सपोर्ट कटरीना कैफ इफ इट इज इफ शी इज नॉट विलिंग टू से एनीथिंग अबाउट दिस। इतने लोग तो है ना ऑलरेडी ओपिनियन देने के लिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन यू नो इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी ड्रैग्ड इन ऑल। वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: Here we go.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अर्पित। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन मस्त जा रहा हो। अगर ट्रैफिक में फंसे हो, ऑफिस जा रहे हो या घर पे चाय बना रहे हो तो बस हेडफोन लगा के चिल कर रहे हो तो अगले कुछ मिनट सिर्फ हंसी मस्ती और नॉस्टैल्जिया के नाम। आज का टॉपिक है इंडियन वेडिंग्स। अब जो हमारी देसी शादियां होती है ना, सिर्फ शादियां नहीं होती हैं, वो एक फुल ऑन फेस्टिवल होता है। ओलंपिक से ज्यादा प्लानिंग, आईपीएल से ज्यादा एक्साइटमेंट और नेटफ्लिक्स से ज्यादा ड्रामा। सच बताओ, किसी ने कभी सिर्फ एक दिन की शादी अटेंड की है? नहीं ना। यहाँ तो फंक्शंस की लाइन लग जाती है यार। प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, रो का एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी, संगीत, कॉकटेल, शादी, रिसेप्शन, पार्टी, ड्रामा, और उसके बाद भी फोटो अपलोड्स करते रहते हैं यार अगले 2 महीने तक। और हमारी जो शादियाँ होती है ना, उनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, हर इंसान को अपना रोल पता होता है। एक हमारे रिश्तेदार होते हैं जो बस खाना रिव्यू करते हैं। यार पनीर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ये रसगुल्ले कहीं सुबह के तो नहीं डाल दिए इन लोगों ने। फिर एक फोटोग्राफर होता है, भैया स्माइल, नहीं नहीं थोड़ी नेचुरल स्माइल करिए। भाई तू बोल के नेचुरल स्माइल करवाता है। सर थोड़ा लेफ्ट, नहीं नहीं थोड़ा इतना लेफ्ट ही मत जाइए, थोड़ा फ्रेम से ही आउट हो गया। और जब तक परफेक्ट फोटो आए तब तक स्माइल परमानेंट एक्सरसाइज बन जाती है, जॉ लाइन बन जाती है आपकी। आपकी नहीं बनती है बट दूल्हा दुल्हन की तो बनी जाती है। और बच्चे, भाई क्या बात है, शादी के पहले स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं, शादी के बीच के अंदर वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, शादी के बाद तक जब वो रात को 2-3 बजे तारों की छांव में जब वो आपके फेरे चल रहे होते हैं 10 घंटे लेट, तब वो लुढ़के पड़े होते हैं कहीं गद्दों में, कहीं सोफों पे। और वो एक कज़न तो हर फैमिली में होता है जो 3 महीने पहले से व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है और शुरू हो जाता है बोलना उसका कि भाई संगीत में एंट्री धांसू होनी चाहिए कि लोग याद रखें, और एक्चुअल परफॉर्मेंस के दिन उसकी एंट्री का पता नहीं बाकियों की टाइटाई फिश होती है। और ऑनेस्टली पता है शादियों का असली हीरो कौन होता है? आई नो सबको पता है, अरे दूल्हा दुल्हन नहीं, खाना। नहीं देखो, दूल्हा दुल्हन से तो मिलना बाद में भी हो जाएगा या पहले से ही जानते हो, पहले लाइव काउंटर को देखो यार, चाट, डोसा, पास्ता, चाइनीज, पिज्जा, अरे भाई। और फिर अंकल पूछ रहे होते हैं, बेटा डाइट पे हो क्या? डाइट, वो भी शादी में। भाई यहाँ कैलोरीज काउंट नहीं होती हैं, प्लेट्स काउंट होती हैं, और बफे लाइन का तो साइंस भी कमाल होता है। सब लोग एकदम पेशेंटली लाइन में खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हाँ कैसे हो, बस बढ़िया, लिफाफे में कितने रुपये लेके आए? अरे भैया हमने तो दे दिया। और जैसे ही गुलाब जामुन या आपके हलवे की काउंटर दिखता है तो सडनली Formula 1 स्टार्ट हो जाता है, और एंड में सब बोलते हैं बस थोड़ा सा ही खाया यार, ज़्यादा खा नहीं पाए, बस 4 स्टार्टर्स, 2 मेन कोर्स, 3 डेजर्ट्स और आइसक्रीम, और अनलिमिटेड आइसक्रीम, सोडा और कॉफ़ी। और इंडियन वेडिंग्स का डांस फ्लोर, एक तरफ प्रोफेशनली कोरियोग्राफ्ड कजन्स और दूसरी तरफ वो अंकल होते हैं जो हर गाने पे सेम ही स्टेप कर रहे होते हैं, 90s का नागिन डांस, चाहे गाना पंजाबी हो, बॉलीवुड का हो या 90s का रिमिक्स। और जब आजकल बजता है गल्ला गुलियां या लंदन ठुमकदा बजता है तो फिर सबका इनर डांसर बाहर आ जाता है। वैसे एक और ट्रेडिशन जो बहुत फनी है, शादी में मिलते ही लोग पूछते हैं, बेटा अब तो तुम्हारी बारी है। अरे भाई 12th में हूँ, कॉलेज भी पास नहीं करा मैंने, मेरी बारी कहाँ से आ गई? तो दोस्तों आज का शो सिर्फ शादी वाली मस्ती के नाम पे है। हम बातें करेंगे फनी वेडिंग मोमेंट्स की, वो रिचुअल्स की, सबसे यादगार बारात, एपिक डांस डिजास्टर, वो मोमेंट्स जो सिर्फ इंडियन शादियों में ही हो सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई जबरदस्त शादी की कहानी है, किसी ने वरमाला से पहले डांस शुरू कर दिया या किसी की पगड़ी उड़ गई या बफे में कुछ लेजेंडरी हो गया, तो जरूर बताइए। नंबर है 9199998595। मैं हूं आपका दोस्त अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी तो शादी की पार्टी शुरू हुई है, और क्योंकि आज है थीम शादी की तो गाने शादी के नहीं बजेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं, हम गाने की प्लेलिस्ट पहले बना देते हैं, बाद में सोचते हैं आधे घंटे पहले कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। बट गाने एक थीम है गानों की, जिसके अंदर ये वो गाने जो बहुत ही वियर टाइप के हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट, क्योंकि ये आप खुद लगा के नहीं सुनते हैं, ये वो गाने होते हैं जो कोई आपको सुनवाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इन गानों की लिस्ट के साथ, अगर मैं चला पाऊँ ऐसे गाने तो।

0: कोशिश जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने चलाने की, तब तक आप ये मेरा मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक सुने, या हम बात भी कर सकते हैं शिकारी के बारे में, बट somehow मैं नहीं बजा पा रहा हूँ, दैट इज अमेजिंग। कोई नहीं, बने रहिए मेरे साथ, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह किसी भी तरीके से अपने गाने जो मैंने इस रात को बहुत ही।
1: You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल रहा है।

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
2: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

0: बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।
1: टूट ले मार
2: बाबा जी।

0: बाबा जी की बूटी। बाबा जी आई लव यू।
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का।
2: दोस्तों, अगर इंडियन शादी में एक बॉलीवुड मूवी है ना, तो उसके सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं फूफा जी और मासर जी। मानो या मानो, शादी में सबसे ज्यादा टेंशन दूल्हा दुल्हन की नहीं होती है, सबसे ज्यादा टेंशन होती है फूफा जी आ गए हैं क्या। और ये जो दो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये पूरी फैमिली रेडार पे रखते हैं ना। मम्मी कोने से पूछी होती है, अरे किसी ने फूफा जी को चाय पिलाई है? पापा बोल रहे थे मास्टर जी को पहले बैठाना वरना बोलेंगे इज्जत नहीं दी। और एक कज़न को ऑफिशियली ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, बेटा तुम बस फूफा जी के साथ रहना, उनकी ट्रेन का टाइम देख लो, उन्हें लेने आना, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले। भाई तेरी बहन की शादी खराब नहीं चाहिए, बड़ा हो गया तू। और कज़न सोच रहा था, भाई क्या है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या रिश्तेदार हूँ, क्या चल रहा है? बाप मास्टर जी और फूफा जी आ नहीं सकते हैं, खुद पूरी दुनिया आ रही है ट्रेन से, इन्हें रास्ता नहीं मालूम है आने का। और सबका पता होता है कांड अगर होगा शादी में तो यही इन्हीं दो डिपार्टमेंट से होगा। अब मान लो कि मिलनी चल रही है, सब लोग प्यार से गले मिल रहे हैं, यू नो पूरा चल रहा है, स्वागत हो रहा है डोर पे, लोग नाच रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तभी फूफा जी एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं पीछे कोने में। हमारी मिलनी का हार कहाँ है? हमारा तो सबसे एंड में होगा ना। और हमारी हार इतनी छोटी क्यों है? हमारी मिलनी क्यों नहीं कराई है? हमारी मिलनी सबसे छोटा फूफा से उनकी तरफ से क्यों करवाई है? और भाई साहब हो जाता है फिर सारा कांड। पाँच सेकंड पहले तक जो शहनाई बज रही थी, अब व्हाट्सएप का इमरजेंसी ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, भाई जल्दी से एक और हार लेके आओ, फूफा जी को पहले बुलाओ, भाई फोटोग्राफर रुक जा, भाई तू रुक जा, तू खाना समोसे बाद में खा लियो, पहले फोटो खींच ले आके। और गलती से किसी और को पहले बैंकेट दे दिया, बुके दे दिया या मिलनी का हार दे दिया, तो बस फूफा जी का तो क्लासिक डायलॉग, हम तो मेहमान हैं ना यहाँ पे, हमें बुलाया है क्यों है? ये सेंटेंस सुनते ही पूरी फैमिली को पता चल जाता है भैया अलर्ट लेवल ऑरेंज हो चुका है, कांड हो चुका है, अब तो बचा लो जो बचा सकते हो। और फिर एंट्री होती है मास्टर जी की। मास्टर जी यूजली शांत किस्म के प्राणी होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा कमीटिंग मीटिंग जैसा एटमोसफियर हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बस ये जो लाइन होती है ना, ये होती है हमारी शादियों की विंटर इज कमिंग टाइप। सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, भाई अब कंपैरिजन शुरू होगा। और खाने का टाइम, खाते के टाइम पे, अरे वाह, फूफा जी को अगर प्लेट मिलने में सिर्फ 2 मिनट लग जाए तो वो खुद कुछ नहीं बोलेंगे, बस आसपास इतना जोर से बोलेंगे, भाई लगता है VIP लोगों को बाद में खाना मिलता है यहाँ पे। और पूरी कैटरिंग टीम स्ट्रेस में, सर पनीर पनीर लीजिए, सर नान नान लीजिए, सर ये पनीर बिल्कुल चिकन जैसा है, खा के देखिए ना। लेकिन सच कहो, फूफा जी और मास्टर जी का गुस्सा अभी ना परमानेंट नहीं होता है, बस थोड़ी देर बाद कोई गर्मा गर्म जलेबी दे दो या चाय दे दो या कोई बच्चा जाके बोलते फूफा जी सेल्फी लेते हैं, बस मूड रीसेट। वहीं पे फूफा जी जो 10 मिनट पहले नाराज थे, अब डांस फ्लोर पे कजरारे पे ताली मजा रहे होते हैं। और सबसे फनी पार्ट, हर फैमिली में लोग कहते हैं कि हमारे फूफा जी बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी दूसरी शादी में वही इंसान किसी और के लिए फूफा बन जाता है। तो दोस्तों, फूफा जी और मास्टर जी के बिना इंडियन शादी वैसे ही अधूरी है जैसे बारात बिना बैंड, बफे बिना गोलगप्पे, थोड़ी सी नौटंकी, थोड़ा सा एटीट्यूड और बहुत सारा प्यार, इसी मिक्स का नाम है इंडियन फैमिली। तो बताइए आपकी फैमिली में फूफा जी ज़्यादा फेमस है या मास्टर जी? हमें अपनी फनीस्ट वेडिंग स्टोरी जरूर बताइए, शायद अगली बार रेडियो पे हम आपकी कहानी भी सुना डालेंगे या हम लाइव बात करेंगे। नंबर है 9199998595।
3: होश के उड़ गए कुकड़ तोते, होप के हो गए टोटे टोटे टोटे।

हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए, किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए, लालू का लाल खा जाए, नक्सल बारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए, हाया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलाइना।
1: नॉर्थ कैरोलाइना, द वेट इज फाइनली ओवर।
2: The undisputed king of dance, India's legendary Prabhu Deva is coming live to Raleigh. Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion and the

0: Sessions, Harini Neelakantan, Natasha Sherpa, Sonali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। हम आज बात कर रहे हैं शादियों के बारे में। वेल, शादियों के अंदर ऑफ कोर्स आपके दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार क्या सही है ना, ये जो समुदाय है, ये जो प्राणी है हमारे कलेक्टिवली, इनका जो समुदाय है, आशीर्वाद देने आते हैं और प्लस आपके फूड का रिव्यू भी करने आते हैं। लाइक दिस इज़ अ बाय डिफॉल्ट प्रथा है कि बॉस फूड क्या आपको क्रिटिसाइज करना ही करना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई क्या वाह क्या खाना था। ऑफकोर्स आपके मुंह पे तो कहेंगे लेकिन पीछे चल रहा था, यार तुम सुबह आए थे फंक्शन के अंदर, जो तुम्हें रुकाया था होटल में धर्मशाला में, जो सुबह पोहा दिया था वही लगा दिया इन्होंने, शाम सुबह का पोहा शाम को ही लगा दिया, खाना मत अच्छा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब हम इट्स नॉट लाइक ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, हम ही लोग हैं, हम ही छुपे हैं वो सब गुण हमारे। ऑफकोर्स हम अभी यंग हैं, बट जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम शादी करेंगे अपने बच्चों की, देन वी वुड बी लाइक डूड शादी बहुत अच्छे से हो गई, सबको सब अच्छा लगा, कुछ कांड नहीं हुआ, सबको खाना पसंद आया। और हाँ, फिर दूसरों की शादियों में जा रहे होंगे और हम कह रहे होंगे खाना कितना गंदा है। समहाउ हमें लगता है कि हमने जो शादी करवाई है वो बेस्ट हुई है, बाकी जो शादियाँ हो रही हैं वो सब बकवास हो रही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब मुझसे मत पूछिएगा कहाँ से आया, बट हाँ समहाउ आई हैव दिस एक्सपीरियंस जो मैंने अपने घर में नोटिस करा है। एंड आई एम श्योर अगर आप भी अपने घर वालों से थोड़ा प्यार करते हैं, उनकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने भी सुना होगा कि ये तो चलता ही चलता है, इसके बिना शादी अधूरी होती है। जब आपके ग्रुप बन जाते हैं, जब पूरे मासी मौसा मामा मामी भाभी चाचा चाची बैठ जाते हैं कुर्सियां लेके, जब शादी आपकी ऑलमोस्ट फेरे चल चुके हैं रात के 11 बजे तक, लोग खा के जा चुके हैं, राइट। कितनी बार हुआ है कि लोग वेट कर रहे हैं दूल्हे की, वो ही नहीं आई बारात, तो क्या करोगे, खाना खाओगे वापस जाओगे और दूल्हा खाली आ रहा है, 10 जनों के बीच में वरमाला चढ़ा रहा है। तो एनीवेज, अगर बाय खुदा ना खास्ता, नॉट खुदा ना खास्ता, आई डोंट नो क्या टर्म है, बट एनीवेज, अगर भगवान ने चाहा कि टाइम से आ गई घोड़ी और दुल्हन भी अपने वहाँ से ब्यूटी सैलून से जल्दी आ गई और डोर पे ज़्यादा देर नागिन डांस नहीं हुआ, तो टाइम से अगर फेरे हो गए, खाना लग चुका है, खाना खा चुके हैं, फेरे चल के अब भाई टाइम हो रहा है, चलो लोग जो दूर दूर के दोस्त हैं वो सेल्फी कर रहे हैं, कुछ मस्ती मस्ती कर रहे हैं स्टेज पे, तो अब वो जो ग्रुप बना है चाचा चाची मामा मामी का, वो सर्कल बना के, हाँ वो जो गॉसिप हो रही होती है वहाँ पे फिर खाने की बारी आती है। अरे यार क्या मज़ा आता है ना भाई, मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे शायद मैं ऐसे ही था वियर्ड कि मैं यू नो लाइक मुझे मेरे एज के बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझे उसमें इंटरेस्ट होता था कि वहाँ आसपास मैं खेलता रहूँ, जो गेंदे के फूल हैं उनको तोड़ता रहूँ और मैं सुनता रहूँ क्या बातें हो रही हैं, बड़ा मज़ा आता था। आपको भी आता था ना, बताइए, नंबर है 9199998595। और आज हम बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं अपने, नहीं नहीं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, धज्जियाँ, बट हाँ ये सब जो बातें हमें पता होती हैं बट हम बताते नहीं हैं, हम वो सब बातें करने वाले हैं।
4: This is the future, man.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ अरबित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। हम बात कर रहे हैं शादियों की। वह शादियां की जब हो रही होती हैं सबसे बहुत सारे काउंटर लगते हैं ना खाने पीने की। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा वो कौन सा काउंटर होता है जहाँ पे बस वो लगा होता है, मेरे कोई जा नहीं रहा होता है, वो भी सोच रहा होता है मैं ये क्यों लग जाता हूँ जबको मालूम है कोई नहीं आने वाला है, कोई दाल नहीं खाने वाला है, क्यों लगा दिया यार। सब लोग बाय डिफॉल्ट जा रहे होते हैं चाट पे, फिर एंड के एंड किया शुरू में ही मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, डेजर्ट्स खा रहे होते हैं, उसकी बात तो करिए मत, कॉकटेल मॉकटेल। सिर्फ सैलेड का काउंटर, यू नो सैलेड का काउंटर कितना फैंसी लगता है यार। वो अच्छा सा काट कूट के तरबूज के अंदर वो कुछ मछली बना रहे होते हैं, कहीं पे बत्तख बनी होती है, कहीं पे स्वान बना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई फिक्र कुछ हो नहीं रहा होता है यार, किसी को फर्क नहीं पड़ा होता है। एंड के अंदर वो ऐसे तितर बितर ऐसा बचा हुआ होता है जैसे कोई डाकू आके लूट के चले गए। एनीवेज, तो हाँ मेरा मानना है कि कुछ काउंटर्स होते हैं स्पेशली ये वाले जो होते हैं ना नॉर्मल खाने वाले, स्पेशली दाल होती है, हो सकता है मैं गलत हूँ बट मुझे लगता है कि ये वाले जो काउंटर होते हैं इनमें कम ही लोग जा रहे होते हैं यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। आजकल तो वो सब शुरू हो गए हैं पास्ता पिज्ज़ा के काउंटर, अनलेस मैक्सिकन भी शुरू हो गया कि नाचोस वाचोस बरीतोस बना रहे हैं तो अलग बात है। बट हाँ मेरे टाइम के अंदर मैं कि यार ये तो घर का खाना है, ये तो मैं घर पर रोज़ बनता है दाल और पनीर, मैं ये क्यों खाऊँगा, मैं वो खाऊँगा ना जो कोई ना खाए। नहीं तो मेरा होता था फोकस कि भाई चाउमीन खाओ और जहाँ पे आपके तवा वाली सब्जियाँ मिल रही हैं भिंडी और जो भी कुछ होता है तवे के अंदर, मैं भिंडी भी ध्यान करता था, और मिठाइयाँ खाओ कॉफ़ी खाओ जो घर में नहीं मिलता है वो मना है वो खाओ, पापड़ वापड़ ये सब चावल रोटी ये नान वान कौन खाएगा। वेल आपका क्या मानना है, आपका फेवरेट काउंटर कौन सा होता था, लाइव काउंटर या ये डायरिया वाला काउंटर जहाँ पे दाल और पनीर ये सब मिलता था। पता ही है फोन है 9199998595।

0: What kind of Christmas is this? It's Christmas in July, peanut style, with the North Carolina Courage on Saturday, July 25th. Bring the whole family to First Horizon Stadium as the Courage take on the Utah Royals at 7:45 p.m. for a summer match day with a holiday twist. Enjoy letter writing to Santa, peanuts-themed fun around the stadium, and a Courage Time Peanuts bucket hat giveaway for the first 500 fans through the gates. Don't miss Christmas in July with the Courage. Get your tickets at tickets.nccourage.com.
1: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
2: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
5: वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे थे इधर उधर की बातें. वेल, इससे पहले जब मैं आया तो हमने गाना बजाया था मैं ऐसा क्यों हूं. भाई मैंने बहुत रिलेट किया है और मैं करता हूं इस गाने से. आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे. यार पता ही नहीं था यार उस टाइम पे, स्पेशली जब आप स्कूल से पास आउट हो रहे होते हैं, करना है क्या है लाइफ में. मुझे तो इंजीनियरिंग का मतलब भी नहीं मालूम था यार, क्या इंजीनियरिंग होती है, लोग क्या ले रहे हैं. एंड जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अभी तो ठीक है, वी हैव मेड सो मच प्रोग्रेस. हम ऑफकोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वी रियलाइज क्या हो रहा है. बट जस्ट इमेजिन, आपने 4 साल कोई कोर्स ले लिया क्योंकि शायद आपका मास्टर जी ने आपको बताया कि भैया ये कोर्स ले लो, या आपके दोस्त ने ले लिया, या आपके बगैर वाले पड़ोसी के बेटे ने ले लिया. एंड देन यू आर स्टक. वो 4 साल का कोर्स प्लस नेक्स्ट 40 ईयर्स ऑफ लाइफ जो उस पर आप डिपेंड कर रही है. हाँ आजकल ऑप्शंस है कि आप निकल सकते हैं उससे, ड्रॉप आउट कर लो, या लाइक जरूरी भी नहीं है यार आजकल.

के फूलों से। भाई मेरा एक ही काम होता था, अपने जो भी छोटे छोटे अपने साइज के बच्चे हैं उनके साथ बस वेट करना। एक्चुअली वेट भी नहीं, पहले तो हल्के हल्के। अरे उससे पहले एक और बात बताता हूँ यार, हर घर के अंदर कोई ना कोई तो होता ही है ना, अदर देन दीज मास्टर जी एंड फूफा जी, कि एक होता है जिनकी घर में वो होती है काइंड ऑफ वर्चस्व होता है, मे नॉट बी अ वेरी फिटिंग वर्ड हियर, बट हाँ यू जस्ट गेट द आइडिया कि यू नो उनकी धाक होती है, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, डरते भी हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं। अब ये नहीं पता रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं डर के रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे घर में थी मेरी ताई जी, सबसे बड़ी ताई जी, राइट, उनके घर में धाक थी। और मैंने तो कभी मेरी तो हमेशा जब भी उनकी नज़र पड़ी मेरे पे, मैं तो डांटी खाई उनसे, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ डांटी खाता था। और मेरी सबसे ज़्यादा डांट इसलिए पड़ती थी क्योंकि मैंने पैर नहीं छुए, राइट। और कितनी बार यार, वो शादियाँ हो रही हैं, वो बैठ के बातें कर रही हैं, मम्मी और चाचियाँ उनसे आके पूछ रहे हैं अरे ये कौन सी रस्म करनी है, वो वहाँ पे वो क्या करना है, वो बिजी है। मैं आया, मैंने पैर छुए, मैं चला गया, मैंने मुझे वेट नहीं करना आशीर्वाद लेने का, ना मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि बहुत सा एक्नॉलेजमेंट हो गई है तुमने पैर छू लिया, मैं चला गया, मेरा ध्यान है खेलने में। वो उन्होंने देखा नहीं, 10-15 मिनट जब मैंने देखा होगा तब डांट लिया, इसको तो पैर भी नहीं छूने हैं ये है। आई वाज लाइक डूड अभी तो छुए हैं, मैं एलिवाई ढूंढ रहा हूँ, अरे आप थे वहाँ पे मामा जी, आपने देखा होगा ये है वो, लेकिन सब मूड खराब हो गया, डांट दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त मेरे कजन से उन्होंने कहा कि बॉस सबसे पहले हम ढूंढते थे, जो भी शादियाँ होती थी सबसे पहले ढूंढते थे कहाँ पे है होता है, ही सबसे पहले पैर छुएंगे और एक्नॉलेज कराएंगे हमने पैर छुए हैं, दो चार एलिवाई रखते हैं, यू नो मामा जी चाचा जी कुछ हैं उनको भी, ठीक है आपने देख लिया हमने पैर छुए हैं, डन ऑल गुड, चलो अब खेलने भाग रहे हैं। और फिर हम खेलने भागते थे, वो गेंदे के जो फूल की जो लट लगती थी ना, देखो पिलर्स पे लगा दी है, शादी का जो मंडप है उसके पीछे लगी हुई है, तो ऑफकोर्स शादी तो अभी हुई नहीं है तो वो अभी तो खराब नहीं कर सकते हैं, लेकिन यार काम भी तो ऐसे स्लॉपी सा होता था ना, तो कई बार वो गिर जाती थी, एक जो गिर गई उसमें नजर पड़ गई, बस वो उठा लिया और भाग गए लेके। और फिर उनसे जो गेंद वो होती थी ना, वो खेला है पेच, क्या कहते थे उसे, चेपन चेपी, जो बॉल से खेलते थे, वो हम फूलों से खेलते थे, एक दूसरे को मार रहे हैं फूल। उस टाइम पे लिमिटेड होते थे क्योंकि ऑफकोर्स शादी हुई नहीं है तो सारे फूल नहीं तोड़ सकते, जो आपकी तकदीर ने आपको दिला दी है बस वही मिले हैं आपको। लेकिन जब शादी हो जाती थी नेक्स्ट डे, आप जब सो के उठे हैं तब पता चला अरे सब फंक्शन हो चुके हैं ना, अब आपका है ये अखाड़ा, जिसको जो मिल रहा है उखाड़ो तोड़ो खेलो, ओह जो मजा आता था, पूरे कपड़ों बदन से गेंदे की फूल की खुशबू आए हैं, बदबू जो भी कह लो आप, यह बहुत फन करते थे। आपका क्या इरादा है, आपने ऐसा फन करा है, नहीं करा है तो भैया आई एम सॉरी आपका बचपन ऐसे ही चला गया, बट जिन्होंने करा है वाह वाह वाह भैया आप हो हम एक जैसे ही हैं, बताइए कहानियां अपनी, नंबर है 9199998595, वरना कहानियां बस मेरी सुनते रह जाएंगी, आपकी कहानियां रह जाएंगी।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Well, I'm just hoping मुझे रेडियो का शो करने दे, क्योंकि जो गाने चला दिए मैंने आज डी के बोस, उसके बाद तशरीफ और जने कौन कौन से, आई होप कोई कंप्लेन ना कर दे, इन्जॉय करे गाने और कम से कम मुझे रेडियो पे मेरा शो करने दें। बट अगले गाने अच्छे आएंगे, आई एम श्योर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फन गाने थे यार, स्पेशली वो मोटू मास्टर, कितने लोगों ने सुना है, नहीं सुना होगा यार, लेकिन क्या मस्त है वो उड़ान मूवी का गाना है, देखिए आपने मूवी क्या, मुझे तो बहुत मस्त लगती है मूवी, और क्या पोइट्री है, काइंड ऑफ अगर सुने तो काइंड ऑफ शेयर पोइट्री है मोटू मास्टर की। क्या थी, हया तो छोड़ो बेहया की चाल भी खा जाए, परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए, मोटू का लाल खा जाए, नक्सलवाद की नाल खा जाए, अरे यार क्या लाइनें हैं उसके अंदर, सुनने वाली हैं, मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट में डिसाइड करा कि हम शादी के बारे में बात करेंगे, बट लकीली मैंने एक गाना डाल रखा था जो समहाउ शादी से रिलेटेड है, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं कई सालों बाद सुन रहा हूँ इसको। मैं YouTube पे ढूंढा था मैंने कई बार, लेकिन मुझे YouTube पे कहीं मिला नहीं, बट रेडियो में मुझे मिल गया। तो सुनिए, हो सकता है आपका भी ये फेवरेट गाना हो और शायद आपको अपने पुराने 90s के दिन याद आ जाए। तो लेट्स हियर दिस आउट।
3: कुकी चढ़ गई है, कुकी की होंगी है, एक मंडिया की कुड़ी देख के इश्क का नशा चढ़िया हुआ, कुकी चढ़ गई है।

अरे ये तो पोस्ट शादी के गाने चल गए, बट एनीवेज यार कुकी कुकी कुकी तो मुझे मस्त लगता है यार, सच्चा पैपी सॉन्ग, क्या बीट्स है उसके अंदर और वीडियो भी मस्त है। जस्ट वीडियो यूट्यूब पे मिलता नहीं है यार, कुछ साल पहले मुझे मिलता था लेकिन समहाउ डिलीट कर दिया गया। एनीवेज कोशिश जारी रहेगी ढूंढने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें, ये बताना भूल गया, ये काइंड ऑफ फिलर है जब मेरे पास कुछ बात करने के लिए होता नहीं है, मैं सोच रहा होता कि मुझे क्या बात करनी है तो मैं बीच में बोल देता हूँ। मैं भूल गया मैं क्या बात करने वाला था। राइट तो ठीक है इस बारे में बात करते हैं। एक तो तारों की छाव में शादियां कैसे होती हैं यार, यू नो दैट थिंग ना, जब फेरे होने होते हैं तारों की छाव के अंदर, तारों की छाव में सूरज की गोद में हो रहा होता है यार, कितनी लेट जाके होती हैं शादियां। और सबसे ज़्यादा फनी बात, जब आपके फेरे जो वो मंत्र उच्चारण जो भी रस्में हो रही होती हैं, हर पंडित की, एक तो लड़की वाले का पंडित होता है एक लड़के वाले का पंडित होता है, दोनों अपनी रस्में लगा रहे होते हैं, उनका कॉमन एजेंडा होता है कि कितनी बार वो पैसे ले सके, यू नो लाइक यहाँ पे दक्षिणा रखें, यहाँ पे पैसे रखें एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। वो तो दोनों का क्यूमुलेटिव एफर्ट हो रहा होता है, बट एंड वॉर तब आती है जब वो कहता है कि तू मैं 7 फेरे लेने हैं, तुम्हें 5 फेरे लेने हैं, और उसके अंदर बहस हो रही होती है, उसके अंदर फिर आते हैं आपके फूफा जी या मासर जी या वो ताई जी जिनका पूरा रुतबा होता है पूरे, और डांट लगाती है पंडित को, पंडित पैसे नहीं ले रहे ढंग से काम करवाओ, और फिर पंडित कह रहे हैं यार आप क्या कर रही हैं, ऐसे ही तो होता है भाई। मैंने नोटिस करा है हमारे जो खानदानी पंडित थे, पता नहीं क्यों खानदानी है, हमारा ऐसा भी कोई खानदान नहीं है कि हम रईस या वो रजवाड़े हैं, बट समहा हमारे खानदानी पंडित जी हैं, और मुझे तो याद है जितनी शादियां कराई हैं उन्होंने नए रस्में लगवाए, हर दूसरे दिन उनके चेंज हो जाते थे, एंड इट्स लाइक क्या हो क्या रहा है, कल ही तो शादी करवाई है भूल क्यों गए कि ये होना है इसके अंदर, कुछ भी चल रहा होता है। मेरे टाइम के अंदर वो पंडित जी नहीं आए, दूसरा है, उन्होंने 5 फेरे लगवाए, हमने 5, उन्हें हाँ जो फिल्मों में दिखाते हैं ना साथ, वो गलत है 5 होते हैं, क्या 5, और उसके अंदर सिर्फ तिशा से वो मैंने ही वादे करे, तिशा ने एक भी वादा नहीं करा, लाइक डूड क्या चल रहा है, मतलब अगर कुछ हो गया एंड के अंदर तो बस मैं ही भुगतूंगा, मैंने ही वादे करें, वो तो निकल जाएगी साफ ना, वो कोर्ट में लाइक मेरी दलील कोर्ट पे रखी जाएगी लीगली, और ना भगवान के उसके अंदर अग्नि परीक्षा के अंदर की भाई वादे तो बस मैंने करे, उसने तो कुछ करे नहीं है भाई, अजीब होता है, बहुत मस्त होता है, लेकिन मस्त हो रहा होता है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा क्या उच्चारण चल रहे हैं कुछ चल रहे हैं, कुछ लोग बहुत जो एंथुमी होते हैं जो कॉफी पी के बैठे हुए होते हैं वो थोड़ी उंगली कर रहे होते हैं पंडित जी का, इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों कर रहा है, ये कहानी सुनाइए, और पंडित जी मजे ले रहे होते हैं कहानी बता रहे हैं, देखो इसके पीछे का मतलब ये है कि पार्वती जी ने जब शिव जी लाइक वो कहानी सुनाते हैं लॉजिक अपनी मैथोलॉजिकल रीजनिंग दे रहे होते हैं, और यहाँ बैठ के हम उन्हें प्रैक्टिकल रीजनिंग बता रहे होते हैं कि ये तो गलत है ये हो जाए तो ये कैसे हो जाएगा, और फिर थोड़ी गहमा गहमी होती रहती है, क्या फन होता है।

वेलकम बैक, मैं हूं अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। वेल, सबसे फनी क्या होता है शादी के अंदर? आपके एक तो क्रिटिक्स होते हैं जो फूड क्रिटिक्स आपके बातें कर रहे हैं, फूफा जी और मास्टर जी हैं जो मुंह सड़ा के बैठे हुए हैं। सड़ा लाइक आई थिंक साड़ू जी का नाम यहीं से आता है, जो साड़ू जी होते हैं वो सड़े हुए होते हैं, इसलिए उनका नाम साड़ू रख दिया गया। बट या सबसे ज़्यादा फनी होता है, ऑफकोर्स ये बाकी लोगों के लिए फनी हो सकता है जो ना समझ होते मुझ जैसे, जिनमें गुजर रही होती है उनके लिए सही है, जब लड़की विदा हो रही होती है और जब सब रो रहे होते हैं। डूड, इससे पहले आप नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, हंस रहे थे, शगुन बांट रहे थे और सबसे आगे पूछ रहे थे खाना खाया, अच्छे से खाया, मस्ती है, सब चल रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन जैसी विदा हुई सबका रोना शुरू, और उसके अंदर कोई बदतमीज सा भाई होता है जो मुंह को बंद करे बैठा हुआ है, इसी हंसी ना छूट जाए वहां पे कि सब कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं, शायद रोना भी नहीं आ रहा है फिर भी रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हंस दे तो कितना फनी हो जाएगा। ये आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं ये सब मेरी मनगिनत कहानियाँ हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ अकेला, कई बार तो मुझे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, डिस्क्लेमर, बट आई एम श्योर काफ़ी होंगे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी हरकतें करी होंगी कि उनकी बहन या बहुत ही क्लोज रिलेटिव शादी करके जा रही है, विदा हो रही है, सब रो रहे हैं, गले में के लो रहे हैं, दूल्हा भी रो रहा है, लेकिन वो है जो मुंह को गुप्पा करके बैठा हुआ है कि उसकी हंसी ना छूट जाए। बताइए, फोन का क्या नंबर है? 9199998595।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, to the signature soul dal bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। Walk and chill space, huge parking, no stress, easy entry. Every day open between 5 PM to 10 PM, Monday to Sunday.
2: तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 Davis Drive, Morrisville. Call करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Yo, what up? This is Big Snoop Dogg. Represent that Punjabi. Hey, y'all, hit him with this.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: वेलकम बैक। अभी हम शादी के आगे बढ़ते हैं, बट मुझे रियलाइज हुआ कि अदर देन की फूड खराब है, लोगों की एक बड़ी कंप्लेंट होती है खाना ठंडा है। डूड, आपने खाना लिया और 20 मिनट आपकी प्लेट में आपकी गॉसिप चल रही है तो खाना ठंडा ही हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, क्या बोलने का है? खाना ठंडा ही हो जाएगा, 20 मिनट प्लेट में रख के गॉसिप कर रहे हो। और एक दूसरी चीज होती है जिसके अंदर लोग कहते हैं वैरायटी नहीं थी। भाई वैरायटी नहीं थी तब तो 6 काउंटर के चक्कर लगा लेते हैं वैरायटी की ना होने के नाम पे। कहीं वैरायटी होती तो जने क्या ही हो जाता। बट एनीवेज, तो ये सब तो होता है शादी से पहले। जब शादी के बाद जब हम घर जाते हैं दूल्हे दुल्हन को लेके, तो वहाँ पे गेम्स खिलवाते हैं, राइट? हर एक का अलग रिवाज होता है। कहीं क्या होता है कि वो परात के अंदर कुछ हल्दी वल्दी या कुछ रंगोली डाल के थोड़ा मटमैला कर देते हैं पानी को, जाके दिखता नहीं अंदर क्या है, और रिंग डाल देते हैं आपकी सगाई की, और वो ढूंढनी होती है लड़का लड़की को उसके अंदर। और आई थिंक बेस्ट ऑफ 3 चलता है, और कंक्लूजन ये होता है, वर्डिक्ट ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा ढूंढेगा काइंड ऑफ उसकी शादी में डोमिनेशन होगा, लाइक वो जीतेगा। उसके अंदर कुछ लड़के होते हैं जो जानबूझ के हार जाते हैं ये ना क्यूट बनने के लिए। बाद में रियलाइज होता है डूड वो सच था, तुम हार गए, अब जिंदगी के अंदर तुम डोमिनेट हो रहे हो। या उल्टा हो जाता है कि लड़कियाँ कई बार क्यूट बनने के लिए शर्मा के छोड़ देती हैं। बट आई डोंट नो, ये मुझे ऐसा लगता है। बट एनीवेज, और भी गेम होते हैं, कुछ होता है कि हाथ खोलना होता है, आई डोंट नो क्या क्या होता है। एक होता है कि आपको जब घर लड़की लेके आ रहे होते हैं तो आपका एक रिवाज होता है जिसके अंदर जो आपकी बहनें होती हैं लड़के की दूल्हे की, वो रास्ता रोकती हैं एंड आपको शायद कुछ छंद पढ़ने होते हैं और गिफ्ट देने होते हैं। भाई मैंने, मेरे पास तो तलवार थी तो मैंने तो तलवार खोल ली थी, बोलो किसी को गिफ्ट चाहिए, सब भाग गई। नहीं भाग नहीं, नहीं सबने मम्मी से कंप्लेंट करी थी और फिर मम्मी ने मेरे कान पकड़े। बताओ अभी शादी हुई है, अभी भी कान पकड़ लिए थे मेरे, क्या इज्जत रह गई थी मेरी यार। एनीवेज, क्या फन होता है ना, क्या फन होता है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो बताइए, टाइम तो खत्म हो रहा है, बट हाँ ऑफकोर्स वी लेट्स टेक कॉल अगर अभी भी आप फोन करेंगे तो। नंबर है 919-999-8595।

तो दोस्तों इसी के साथ आज की शादी स्पेशल महफिल यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने फूफा जी की नाराज़गी भी देखी, मास्टर जी की मीटिंग्स भी और बफे की पॉलिटिक्स भी और रिश्तेदारों की लेजेंडरी फूड रिव्यूज़ भी। लेकिन सच कहूँ इन सब के बिना ना शादियाँ शादी नहीं लगती हैं। कभी डीजे का स्पीकर बंद हो जाता है, कभी बारात लेट हो जाती है, कभी फोटोग्राफर बोलता रहता है भाई एक और पोस्ट भाई उसको तो पैसे कमाने ना, और कभी कोई बच्चा स्टेज पर चढ़ जाता है और कभी कोई रिश्तेदार बोल देता है हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस वक्त थोड़ी इरिटेशन होती है, लेकिन साल बाद जब फैमिली मिलती है ना तो याद खाना नहीं रहता है, याद ही फनी मोमेंट्स रहते हैं। वही स्टोरी सिर्फ बार बार सुनाई जाती हैं और हर बार पहले से ज़्यादा फनी लगती हैं, क्योंकि मिर्ची तड़का जब खाना पुराना होता जाता है तो मसाले घुटते रहते तो अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर में भी कोई शादी आने वाली है तो बस एक काम करिएगा, थोड़ी कम फोटो लीजिए, थोड़ा ज़्यादा हंसिए और बफे की लाइन में खड़े होकर भी आसपास के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि असली एंटरटेनमेंट कभी स्टेज पे नहीं, ऑडियंस में होता है। मैं हूँ अर्पित और आप सुन रहे हैं इधर उधर की बातें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए शादियाँ सिर्फ दो लोगों का नहीं पूरी फैमिली की स्टोरीज दे जाती हैं। मिलते हैं अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ, नए किस्से और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: विशाल ददलानी एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ड्रामा क्वीन कंपोज्ड बाय विशाल शेखर एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड कुमार ओनली ऑन रेडियो सिटी.

Sachin clears the air on his surgery and ICU admission, says I was referring to Argentina's loss. वैसे भी बिग बी के ट्वीट समझना आसान नहीं है. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो व्हाट, अमिताभ बच्चन हैज क्लेरिफाइड दैट ही इज परफेक्टली फाइन आफ्टर हिज रीसेंट ब्लॉग पोस्ट पार्क्ड हेल्थ कंसर्न. द 83 ओल्ड एक्टर सेड ही डिड नॉट अंडरगो एनी सर्जरी और हॉस्पिटल और स्टे, एक्सप्लेनिंग दैट हिज पोस्ट वॉज मेटाफोरिकल एंड रेफर्ड टू अर्जेंटीनाज डिफीट एंड मेसीज आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप फिनाले. स्पीकिंग टू वैरायटी इंडिया, बच्चन सेड ही वॉज कंपेयरिंग द इमोशनल आफ्टर of a campaign's loss to the difficult recovery period after surgery, adding that his words were widely misunderstood. यही होता है जब आप मतलब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं, या तो आप समझ जाते हैं या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: Naira 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao, Pakka Desi.
2: रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं तौबा तौबा, संग कंपोज्ड एंड रिटन बाय करण औजला।